निसारुदे सारु कोटात सारुदे निसारु कोटात दकिन्नावो वैरदि कल्पनावले इलंबुनु पुज्गलयान सारुदेयक दहमक नुल